मौजू मरियाम बाप कर गए हम दूसरी से मर गत मरियाम बाप कर गए मुजुर कंटोम फाल अगली जे Mariam